गए हूं एक अरदास मुंह निकल गई हूं मन अंदर एक तांग ते लालसा पैदी हुई पैदा हो गई है वो एक संसार दी अगन विच इस दुनिया दी तपत विच रहंदिया होया जे जीवन दी बसंत रुत मिलदी है ते ओ इत्थे रहंदिया परमात्मा नाल जुड़िया मिलदी है इसलिए मेरी हुन मन दी एक इच्छा है एक लालसा है एक तांग है

डंडोर बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ अगाम अगोचर

जाचु संतरवाल। गुरु रामदास पातशाह जी पावन बाणी के अंदर कृपा करते हैं, असी तीर्थां ते जाने हैं अपनी मैल लाने वास्ते, पर जिन्ने तीर्थ देवत्या ने बनाए ने या देवत्या करके बने ने, क्योंकि कबीर साहब जी का बते ने ना, तीर्थ बड़ा के हर का दास, तीर्थ वड्डा है या हरि दा सेवक रब दा प्यारा वड्डा है। उथे जवाब है तीर्थ वड्डा नहीं रब दा प्यारा वड्डा है। एक विद्वान दे मैं बचन पढ़ रहा सी, वो कहंदे ने सारी गंगा जिहड़ी है ना इस दे हर थां नूं पवित्र नहीं कहा गया, कुछ घाट ने कुछ जगह ने कुछ तीर्थ ने जिथे खास घटनावां घटियां रब दे प्यारिया ने अपने मुबारक चरण पाए, वह किनारे वाली जगह पूजन योग होगी। फिर ध्यान देवियो, कौ कबीर हाउ भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। ते गुरु रामदास पातशाह जी कृपा करते ने, जितने तीर्थ देवी थापे सब कितने लोचे तूर साधु की ताई, जाचू संतरवाल। त्रिवेणी का इनान करने वास्ते लोग जाते ने, क्यों समा आ रहा है प्रयागराज जिन्हों कहते हैं इलाहाबाद, लखां की गिनती विच लोग जाएंगे। क्यों? एक विचार है पुरातन ग्रंथां के अंदर सनातन धर्म के मुताबिक कि तीन नदियां का संगम है त्रिवेणी, इतने जरा इनान करेगा उन्हें बड़ा वड्डा पुन प्राप्त होगा। पर महाराज कृपा करते हैं गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम धूर साधु की ताई, जाचू संतरवाल, किलविख मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूर गवाई। प्याओ एक बारी ये बचन दुरा लीए, माघ मजन संग साधुआ, माघ मजन संग साधुआ, माघ मजन संग साधुआ, माघ मजन संग साधुआ, थोड़ी कर इनान, थोड़ी कर इनान, दीना नाथ दयाल मेरे स्वामी, दीना नाथ दयाल, जाचू संतरवाल। रबा तू गरीबां दा मालक है, दया दा घर है, ऐ मालक प्रभु कृपा कर मैनू तेरे प्यारिया दी चरण धूड़ प्राप्त होवे, चरण धूड़ मिल जावे। ते साडी तां रोज अरदास है ना, सेई गुरमुख प्यारे मिलो जिन्हां दे मिलिया आप जी दा नाम चित आवे। सत्ती पैड़ी सत भला
ਬਈਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ ਉਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

रब जी, प्रभु जी, मेरा जन्म मरण का गेड़ मुका दियो, क्योंकि हार के तुहाडी शरण दे विच पिया हां, तुहाडे द्वारे ते आया हां। फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। प्रभ जन्म मरण निवार, हार परिया द्वार। हार के तुहाडी शरण विच पिया हां, जन्म मरण का जिहड़ा गेड़ है ना, ये मुका दिओ। क्योंकि सतसंगत, भगतां ने दुनियावी कोई दुख नहीं मनिया, पर इस दुख का जिक्र उन्हें भी किया है। एक दुख काटो राम राय मेरा, अगन दहे हर गर्भ बसेरा। दुनी का चक्कर ये निवार दिओ। अरदास ने मेल लहो दयाल,

तप तप हैं जप हैं बेअंता, तेरे अनेक पढ़ हैं बहु स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीवड़ वरना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहें सोई, तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जन होई, आस्था महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तुम पावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हम पाई राओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहें, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, बिजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बैन दूजा वरना कोए, तू कर कर वेखहे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आस्था महला पहला, तित सर्व रड़ै पहिले निवासा, पाणी पाप कितन है किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मान एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया, आस्था महला पंजवा, पही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजा मिलाग पव जल तरन कै, जन्म ब्रथा जा तरंग माया कह राओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा, पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा,

करियाए, सब बैरन कौ आज संगरियाए। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहें प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उभरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरिया सुरजू कर हो रक्षा। राख ले हो मखनहारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोबद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरिया सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी भूजो चारे। तुम सब ही तेरह निरालम, जानत भेद भेद अरयालम। निरंकार निर्बकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूढ़ चारत भेदा, जा को भेव न पावत भेदा। ताको कर पहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीणत न है पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पैन पैन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज से तिजकीनी, पुतपुज खान बहोर रच दीनी। कहूँ भूल राजा हवा बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार या सिख संगरो। दोष जेते उठ बतत पाता, सकल मुलेश करो रण काता। जे अस्तुज तब शरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, जनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दोष्ट अरेष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तन कमो हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दोष्ट शाह स्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास दे ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दोष्ट दोख दे रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दोष्ट दोख ते लेहु बचाई। सोइया पाएं गहे जब ते।

मदेग न माने सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कहें हम एक न जाने सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माही सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां।

हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किश है। जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया। वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू

0: कार्य सफल हमारे, हर हर चरण हृदय उतारे, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तुत बिचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कुछ ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मझारे। पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तुत बिचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछ ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मझारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ओ सोहिला राग गौड़ी दीपी महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ताखी है करते का हुए विचारो, कित कर गावो सोहिला सिवरियों सृजनहारो। तुम गाव हो मेरे निरपव का सोहिला, हो वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरा दान कीमत ना पवै तिसदा ते कवन सुमार। संबत शाह लिखिया मिल कर पाव तेल, देव सज्जन असी छड़ियाँ ज होवै साहब सुमेल। कर कर इहो पहुंचा सदड़े न तपवान, सदन हारा सिमरिया नानक से देहि अवन। राग आस्था महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो कर राख बढ़ाई तोय राव, विश्व चसियां कड़ियां पहरा, थिती वारी माह हुआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के सेवे। राग तनासरी महला पहला, गगन मै थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मालिया नलो पवन चबरो करे, सगल बनराय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वा जंत पेरी राव। सह सब नैन नन नैन है तोहे काओ, सह समूर्त नन एक तोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बैनो, सह सब गंध चलत मोही। सब मैं ज्योत ज्योत है सोए, तिस दै चानण सब मैं चानण होए। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हार चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिन मोह आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिन कौ, होए जाते तेरा नाहि वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर व भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मान हार लेव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडाओत पुन वड्डा हे राव। साकत हर रस साध न जानिया, तन अंतर हम मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पाव हैं, जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम सुमाणे, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड बड़ा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मिता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आ गए बसन सुहेला। औध कटै दिन सरैणारे, मान गुरमिल का सवार राव। हे संसार विकार संसे मह, तरो ब्रह्म ज्ञानी, जिस जगाए पियावै रासो।

लग गई, मेर सुमेर ना वाउ डुलाई। हुण समुंदर नूं अग साड़ नहीं सकदी, शायर समुंदर नूं कहिंदे आ, समुंदर नूं अग नहीं लगदी, पानी नूं अग साड़ नहीं सकदी। समेर पहाड़ ते मेर टल्ले नूं कौण हिला नहीं सकदी। समेर पर्वत बहुत वड्डा है, किन्नी नेरी आ जाए, किन्ना तूफान आ जाए, पहाड़ नूं हिला नहीं सकदा, जड़ तो नहीं हिला सकदा। वक्री गल है, छोटे मोटे पत्थर डिग पैंदे ने, पर पहाड़ नूं जड़ों नहीं हिला सकदा। बाण ना तुर अच असमान जाए, वाहिंदड़ पिछे पछताई। आकाश वल नूं जिहड़ा तीर कमान दे विच पिया होया तीर है, वो चलाउण वाला जोर दी खिच के चलाउंदा है, तो बड़ी उच्ची उडारी मारदा है, क्यों लगदा भी हुणे वापस नहीं मुड़दा, पर अखीर तक नहीं पहुँच सकता। तीर अंदाज पिछों पछताउंदा है, क्योंकि तीर मुड़ के धरती ते आके डिग पैंदा है, उहदे सिर वल आउंदा है। ਸਰ ਸੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਆਵੇ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਲਾ ਚਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕੂੜ ਕਮਾਈ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੂੜ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। महाराज जी ने बाणी विच बड़ा प्यारा वचन कहा, कूड़ नखुट्टे नानका ओड़क सच रही। अखीर नूं सच दी जित हुंदी है, कूड़ा नखुट जांदा है, झूठा शर्मिंदा हुंदा है। अगे महाराज भाई गुरदास जी कहिंदे, अंत नूं झूठे नूं पछताउणा पैंदा है। सच सचावा माण है, कूड कुड़ावी मणि मनूरी। मणि मनूरी का भाव है शोभा ते मनौत। सच का सच्चा माण आदर हुंदा है, सच दे रास्ते तुरन वाले का भी सत्कार हुंदा है। झूठ दी जिहड़ा न्यायी जीवन बतीत करदा है, वो मणि मनूर वर्गा, उहदी शोभा ते मनौत नहीं हुंदी, झूठी हुंदी है। अजिही कुछ चल रहा, लोग बड़ियां झूठियां सिफतां करदे आ, झूठी शोभा करदे आ, अपने स्वार्थ निकल जांदा है, फिर उसे मूँह नाल उहदी बुराई करदे आ। कूड़ा कूड़ी पाए है, सच सचावी गुरमत पूरी। कूड़ियारां दी कूड़ी, झूठियां दी झूठी संगत आबरू है, सच्चियां दी संगत गुरु नाल है, गुरु दी सिख्या मिलदी उहनां नूं, वो सच के रस्ते तुरद, वो झूठ के रस्ते तुरद है। कूड़ा कूड़ा जोर है, सच सताणी गर्व गरूरी। झूठिया का बोलबल है, झूठिया का इकट्ठ बहुत होंगे, तो सच्चा का जोड़ा इकट्ठ नहीं होंगे कभी, सच्चे लोग बहुत घट होंगे ने। झूठिया के हंकार होंगे, हौमे होंगी है, सच वो बोलने वाले विच निम्रता हुंदी है, वो गंभीर रहिंदे ने। कूड़ ना दरगाह मन्नीआ, सच सुहावा सदा हजूरी। दरगाह दे विच झूठ दी कोई मानता नहीं हुंदी, कोई नहीं पुछदा झूठे नूं, ते सच बोलण वाले पुरख दी वड्याई हुंदी है, वो परमेश्वर दे दरबार विच वी सत्कारिया जांदा है। शुकराना है सच घर, कूड कुफर करना सबूरी। सच दे घर दे विच शुकराना कीता जांदा है, सच्चा इंसान शुकराना करदा है, परमेश्वर दा धन्नवाद करदा है, ते झूठे दे घर दे विच कुफर तोलिया जांदा है। जिहड़ा हिरदा झूठा ना, मनुख झूठ बोलण दी आदत पैगी, वो वारी वारी झूठ बोलदा है, उहदे हिरदे विच संतोख नहीं आउंदा। हस्त चाल है सच दी, कूड़ कुटंगी चाल पंडूरी। भेडूरी कूड़ कुटंगी चाल भेडूरी, सच दी जिहड़ी चाल बड़ी हौली है, जिवें हाथी हौली हौली तुरदा ना, थप थप करदा बड़े बड़े पैरां नाल, इदां सच दी

पवन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलो भया। नील वस्त्र लय कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया।

सचे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे।

सागर की निध कत पाई है पोखर से दिन कर सर जोत दीप ना पुजाई है। इंद्र बरखा समान पूजस ना कूप जल, इंद्र बरखा समान पूजस ना कूप जल, चंदन सुबास

दयाना आन देव मैं जो खंड ब्रह्मांड अदै उसलो ताई है। श्री गुरु दया की दया ना आन देव मैं सतगुरु दाता दयाल है जिसनु दया सदा होए दया सदा होए सतगुर सबना दा भला मनाएंदा किसदा बुरा क्यों होए सतगुर दाता दयाल है तिलक जंजू राखा प्रभ ताका दाता दयाल है तिलक जंजू राखा प्रभ ताका इनो बड़ो कलू मैं साका जो शरण आवे तिस कंठ लावे दाता दयाल है जिसनु दया सदा होए श्री गुरु दया की दया ना आन देव मैं जो खंड ब्रह्मांड अदै उस लो सही है। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सो है सब जग पयो जय जय जय सुर लो

वाहे गुरु ताके परमात्म से रैन दिन सत्यायो है। खालसे के सिख की निंदक जो निंदा करे जानबूझ नरक परे ऐसो ही बतायो है। सुरजन उबारबे को दुर्जन के मारबे को संकट निवारबे को खालसा बनायो है। पीवो पोहल खंडे तार होए जन्म सुहेला खालसा बनायो है। निज पंथ चलायो खालसा तार तेज करारा निज पंथ चलायो खालसा निज पंथ चलायो खालसा तार तेज करारा ओ गुरु गोविंद होए प्रगटिया ओ गुरु गोविंद होए प्रगटिया दसवें अवतारा ओ गुरु गोविंद होए प्रगटिया दसवें अवतारा धन गुरु गोविंद सिंह साहेब धन गुरु गोविंद सिंह साहेब ओ गुरु गोविंद होए प्रगटिया दसवें अवतारा जिन अलख अकाल निरंजना अलख अकाल निरंजना जपे ओ करतारा जिन अलख निरंजना

अब पकड़ो चरण गोविंद के, अब पकड़ो चरण गोविंद के, सब पकड़ो चरण गोविंद के। पीवो पोहल खंडे तार, पोहल खंडे तार, पोहल खंडे तार, पोहल खंडे तार। वो जन्म सोहेला, वो जन्म

सोई सिंह प्रधान अवर नापोल जोला पांच सिंह अमृत जो देवे तासो सिर तर

कछ कड़ा कृपाण गंगा केश की, कछ कड़ा कृपाण गंगा केश की, कछ कड़ा कृपाण गंगा केश की, कछ कड़ा कृपाण गंगा केश की। पंच कटारी रहते तारे सिख सोई, वाहिगुरु जी का खालसा। केसा नु साफ रखे सिर ऊपर जूड़ा करे दस्तार सजाए, कछ कड़ा कृपाण ए कंगा केस की, कछ कड़ा कृपाण कंगा केस।

स्टेशन की जय प्रतपाल न उसरन स्यों कटियो बाल उपदेश धन गुरु नानक देव साहिब जी मरदाना जी नू केस नहीं कटने टोपी नहीं पाउनी होए सिख सिर टोपी धरे सात जन्म कुश्ती होए मरे स्टेशन की जय प्रतपाल न उसरन

कबीर पांग माछली सुरा पांग जो जो प्राणी खाए पांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए तीर्थ व्रत नेम किए ते सबे रसा तल जाए गुरमत मद जो पीवते बिखली मत कमली राम रसायन जोड़ते राम रसायन जोड़ते नानक सच अमली नानक सच अमली अमली नानक ए राम रसायन जोड़ते ए राम रसायन जोड़ते वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु रहतनामा भाई चौंपा सिंह जी गुरु का सिख शराब कभी ना पीवे गुरमत मद जो पीवते बिखली मत कमली।

देख पराइया चंगिया मावा धिया पिया जाने देख पराइया चंगिया देख पराइया चंगिया मावा धिया जाने देख पराइया चंगिया निज नारी के संग ने हो तुम नित बढ़ाइयो धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब उपदेश धन गुरु तेग बहादुर साहेब निज नारी के संग ने हो तुम नित बढ़ाइयो पर नारी की सेज फूल सुपने हुए

निरपंख चलायो खालसा तर तेज करारा निज फतेह बुलाई सतगुरु निज फतेह बुलाई सतगुरु तीनों जियारा निज फतेह बुलाई सतगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह निज फतेह बुलाई सतगुरु तीनों उजियारा झूठ कपट सब छह।

झूठ ए झूठ कपट सब छह पयो झूठ कपट सब छह पयो सच सच वरतारा सच सच वरतारा ए तुरक द्वंद सब उठ गयो तुरक तुंग सब उठ गयो रचियो जयकारा तुरक तुंग सब उठ गयो रचियो जयकारा रचियो जयकारा।

कुड़क तुम सब उठ गयो रचियो जयकारा, उठ गयो रचियो निज पंथ चलायो खालसा, पंथ चलायो खालसा, धरते

फिर केस धार कर खड़ग को, फिर केस धार कर खड़ग को सब दुष्ट पछारा, खड़ग को सब दुष्ट पछारा, सील जत की कछ पैर तीन जात की कछ पैर पकड़ो हथियारा, सच फतेह बुलाई गुरु की, सच फतेह बुलाई गुरु की,

अब दैत अरन को घेर कर, दैत अरन को घेर कर की जय पर हारा। सब दैत अरन को घेर कर, जब सहज प्रगट हो जगत में, सहज प्रगट हो जगत में गुर जाप उचारा। सहज प्रगट हो जगत गुर जाप अपारा, गुर जाप अपारा। जो उपजे सिंह पुचंगीए, उपजे सिंह पुचंगीए नीलंबर तारा। यो उपजे सिंह पुचंगीए तुरख दुष्ट सब छै किए, तुरख दुष्ट सब छै किए हर नाम उचारा। तुरख दुष्ट सब छै किए हर नाम उचारा, हर नाम उचारा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

白鼠白鼠白鼠白鼠白鼠白鼠白鼠，पुरख दुष्ट सब छह किए हर नाम उचारा, तिन आगे कोई न ठहरे हो आगे कोई न ठहरे हो भागे सिरदारा, यह राजे शाह अमीर रे राजे शाह अमीर रे होए सब ठारा, राजे शाह फिर सुनकर ऐसी तमक को फिर सुनकर ऐसी तमक को कांपे गिर पारा, फिर सुनकर

सुनकर ऐसी धमक को कांपे गिर पारा, फिर सुनकर ऐसी धमक को तब सब धरती हल चल पई साडे घर बारा। तै बिन सतगुर को है नहीं, क्यों ऐसे धुंध कलेश में खपियो संसारा। तब बिन सतगुर को है नहीं, पियो पोहल खंडे तार, पोहल खंडे तार, पियो पोहल खंडे तार। होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला, बिन सतगुर

हक हक आईना हक हक आईना काल सो बेकीना काल सो बेकीना आसरो मंसूर ए फाए जुलनवार देख सारा यार देख सारा यार धन गुरु गोबिंद सिंह साहब धन गुरु गोबिंद

ऐसे मरना जो मरे धन धन बाबा जोरावर सिंह जी धन धन बाबा जोरावर सिंह जी धन धन बाबा फतेह सिंह जी धन धन बाबा फतेह सिंह जी बोर न मरना हो धन धन बाबा अजीत सिंह जी धन धन बाबा

से पूरन परमानंद वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: आगे आगया मैं तेरी प्रभु आगया हुक्म चिर हुक्म चिर हुक्म जो बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी जो बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी कुदरत कवन हमारी कुदरत कवन हमारी हाँ जो संगे नानक जस गायो
1: जो बुला रहे हैं।

ज्योत में दाता की दो ज्योत में दाता क्या तुम है ज्योत ज्योत में दाता अखिल कला भरपूर अखिल कला I'm sorry.

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखकाई, माया मोह परम पै पुले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ तीर्थ की।

सच्चे साहिब क्या ना ही करते रहे। साचा नाम राधारो साच नाम धार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए बसया, जिन इच्छा सब बजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु बिटो, जिस दी है बड़ियाइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, बाजे पंच शब्द तित कर सभागै, कर सभागै शब्द बाजे कलाजित कर धारिया। पंच दूत तुद वस किते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जन को, से नाम हर कह लागे, कहे नानक तैं सुखो आदित कारु अनहद वाजे। साची लेवै बन देन माणी, देन मण लेवै वजो, क्या करे बेचारिया, तुद वास मृत कोय नाही, कृपा कर बनवारिया। एस न और साव नाही, सद लग सवारिया, कहे नानक लेवै वजो, क्या करे बेचारिया। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा करे कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिन का मोह टुटा, दिन का सब सचा सवारिया, कहे नानक आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। बाबा जिस तू दे सुन पावे, पावे तस जाते जिसन और क्या करे बेचारिया। एक अंदरों जिन का मोह टुटा, दिन का सब सचा सवारिया, कहे नानक आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। बाबा जिस तू दे सुन पावे, पावे तस जन दे जिसन और क्या करे बेचारिया। एक बरम पुले फिर दिस एक नाम लाग सवारिया, गुरप्रसादी मन पया निर्मल जन पाना पावे, कहे नानक जिस दे प्यारे सुई जन पावे। आवो संत प्यारे हो गत की करें कहानी, करें कहानी गत गिरी गत दुबारे पाई है। धन मन धन सब सौ गुरु का हुक्म मनिया पाई है, हुक्म मन्य गुरु के रखा वो सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संत कथ कथ कहानी। ए मन चांचला जदराई गिने ना पाया, जदराई ना पाया गिने, दूसण मन मेरिया ही माया मोहनी, जने परम भुलाया, माया तमुनी दिन कीती, जन ठगौली पाईया, गुरबाण कीता दिसै बिटो, जन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चांचल जदराई कने न पाया, ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, कुटंब तुझे दिखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों जित लाई है, ऐसा काम मूल न खिचै जदंत वशत आई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू अब तेरा नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम गोचरा तेरा।

कर्मी सहज न उपजवण स जस स न जाय न जाय स सगत संजम रहे कर्म कमाए स सजीव मलिण है संजम धोता जाय मन तो व शब्द लागो हर से रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए स सहज जाय जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया हे किसना वड्डा रोग लगा मरण मनो बसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेतालिया कहे नाम के जन सच जया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मन सद समाणी जन्म तंजनी खटिया पड़े सेवन जारे कहे नानक जन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु से सन्मुख होवे हो तो सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय ते आई अंतरात्मा संभाले आप शब्द सदर है परणे गुर बिना वर्ण जाने कोई कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होवे जे को गुर ते बिमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए जे को गुरते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न उरदा कोई पुछो वेखिया जाई अनेक जोनी भरमे आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी बाणी गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी जन को नदर कर्म होवै हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कची है बाणी बाणी दा कची सतगुरु बाजो और कची बाणी कहिंदे कचे सुनदे कचे कची आग बखाणी हर हर उन्नत करे रसना कहे कछु न जानी चित जन का हृदय माया बोलन पैर बाणी कहे नानक सतगुरु बाजो और कची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जत जड़ाओ शब्द रतन जत मन लागा ही हुआ समाओ शब्द छेती मन मिलया सच लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जसनों दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जत जड़ाओ शिव शब्द आप पाए कह कर दापे हुकुम्बरदाए आप वेख गुरमुख सब जाए तोड़े बंधन हो वह मुखत शब्द मन बसाए गुरमुख जिसनों आप करे सो होवै एक सस्यों लिबलाए कहे नानक आप करता पे हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी तेही गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रहण बिहानी गुर कृपा से जन जागे जन हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत् पाए जिसनों अन दिन हर लिब लागे जागत रहण बिहानी माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क मनो विसारी है मनो क्या विसारी है बड़ दाता जे अगर मैं आहार पहुंचावे उसनो के पो न सके जिसनो अपनी लिबलावे अपनी लिबला पेला ये गुरमुख संभाली है कहे नानक बड़ दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उदर में तैसी बार माया माया अगन सब एक जे ही करते खिदर जाया जहां तुभाणा का जमया परवार पला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ही माया जर विसरै मोह बजै पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप मुल कह मुल न पाया जाई किसे विटो राहे।

सिमरौ सिमरौ सिमर सुख पावौ सास सास समले एह लोक परलोक संग सहाई जात कात मोहे रखवाले। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तन आसरी महला पंजवां जा कौ हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वसदा कै जा का सतगुर पूरा। जा कौ हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वसदा कै जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहा। जन के चरण वसै मिरही अरै संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम।

अष्टपदी संत दुख नाल जगत है, संत दुख जन पे नहीं छुटे, संत दुख सुख सब जाए।

0: केवल एक जुल्म बन के रह जाएगा, इस तो बाद नहीं। जलाले पातशाही हो जहां जमहूरी तमाशा, जुदा को दीन से आंख से तो रह जाती है चंगेजी, चंगेज का जुल्म बन जाएगा। राज माड़ा नहीं, पर जे असी परमात्मा नु छड के असी कहांगे मिल जाए नहीं। ध्रुव तुरे ने किस उद्दम ते राज मिले, पर उन्हें नहीं क्या मां राज मिले तो मैं मतरही नू घरों बाहर कर देना, एदा सिर ला देना। मां मैं दस जेड़ी धक्के मारती मैं प्यार किवें कर लगता है। किस उद्दम ते राज मिले शत्रु ते सब खोमन मीता। मां ने कहा बेटा परमेश्वर आराधी है जिद्दू हो पत पुनीता। ध्रुव का तुरना एक राज मंजिल सी, पर प्रहलाद की राज मंजिल नहीं। ओदी मंजिल गद्दी नहीं, प्रहलाद की मंजिल सी के बस दा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पटरानी पूत प्रहलाद कहानी माने तिन तो औरै ठानी। औरै ठानी ओदी मंजिल परमात्मा है। एक कामना नू लेके एक कामना रहत गुरु साहब ने कहा तू किसे तरीके नाल या तू कामना लेके किते बाणी नाल जुड़ ते निष्कामी हो कि किते जुड़ तुरे ते सही चेते रखी रस्ते उत्ते सारे मिल जाने। बाणी विच हजूर दा एक बचन हो इस विचार नू के परमात्मा बाणी विच बोलदे ने ते जदो भगत बातां करदा ते उसका उत्तर देंदे ने। बाबा फरीद अर्ज की पहले भगत ने ते इस महापुरुष ने कुरान ता मां कोलो कंच जबानी की थी सी, पर एदी जिंदगी ते चिनग उदवाई सी जदों मुलाना रूम तबरेजी ने इनू एक अनार दिता सी। इन्हां दे पिंड आए मुलाना रूम तबरेजी सिर वेखण लई, उसने एक अनार दिता। लोग इकट्ठे हुए फकीर नू देखण, उन्हें क्या कोई ऐसा बंदा है तुहाडे पिंड च, कोई ऐसा बशर है कि जरा अल्लाह नू रब नू प्यार करदा होवे। सारे पिंड विच्चों बाबा फरीद निकले। इन्हां नू बचपन विच काजी बच्चा दीवाना कहिंदे सन। इस नू अनार पकड़ाया, कहन लगे बेटा ये जितने लोग इकट्ठे हुए ने सारियां नू अनार दे दाने वंड दे। बाबा फरीद बच्चे ने एक एक दाना वंडना शुरू किया। एक दाना अनार दा जमीन ते डिग पिया, देख लिया सारियां नू दाने वंड के अपने लिए अनार दा खोल रह गया, ते थले गिरे हुए उस दाने नू मिट्टी चो पूंज के अपने मुंह च पाया। वो दाना की पाया कि इस बच्चे दे अंदर एक नवी रोशनी आई, एक नवी प्यास लगी, एक नवी तांग पैदा हुई। ते जदों वो दाना खादा ते मन च फुरने ही बनिया कि जे सारे अनार विचों कुछ हिस्सा होर रख लेंदा, ते अनार देन वाले ने फुरना पढ़ के क्या बेटा दाने सैकड़े हुंदे ने पर कम दा इक्को ही सी, जेड़ा कम दा सी वो तेरे मुंह च चला गया, फुरना मत बना। दाने सैकड़े ने पर कम दा एक सी जो तेरे कम दा सी वो तेरे कोल आ गया। बाबा जी रो पै अखां पा रही ते उन्हें हाथ सिर ते रख के बेटा आने वाला अजे आया नहीं, इंतजार कर साबरां दे राह तुर ते सबर वाले ही अखीर ते मंजिल ते पहुंच दे। उस महापुरख ने रब नाल गल्लां कीतियां, परमात्मा नाल गल्लां करदियां रब ने बोल के क्या फरीद एक काम कर, इस दुनिया में जना खना बंदा विरोध कर रहा है, तू अपने आप नू सवारना शुरू कर। जिस हुण ये जदो अर्थ किते जांदे ने इहदे विच शब्द बाबा फरीद दे श्लोक ने, पर अर्थ करदिआं इही कहांगे परमात्मा बोल रहा है बाणी च। कहन लगे आप सवारें मैं मिलें, तू अपना आप सवार मैं मिलें, जिहड़ा शब्द है ये परमात्मा कह रहे ने, रब कह रहे है, अल्लाह कह रहे है, तू अपना आप सवार मैं तेनू मिलांगा, मैनू मिलेगा, आप सवार है मैं मिलें, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा कोई रहे, मेरा कोई रहे
1: ਰੱਬ

तो अब इस तरह जीवन की सुकी हुई शाखा जां सुक रही शाखा उस सुकेवे तो बचाउन दा साधन जिंदे बारे सतगुरु ही आखदे ने सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव इउं हरि जेठ नाल जिहड़ा सब तो वड्डा है सब तो पहला है आदि सच है उस नाल मिलाप दा साधन।